0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम रेंडसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27.80 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों

0: लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani News, read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his 5-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as a global leader. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his 5-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to official Gazette notifications issued by Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on

हे प्रभु, ए जीवन तो तुम विधान आमर नीति प्रति चलनी जीवन यात्रा अतीत वर्तमान भविष्य तो तुम्हारे नियंत्रण रे एणु आमर सुख स्वच्छंद्य और समृद्धि प्रतीक्षता तुम्हें ही प्रभु, केवल तुम्हें। हाँ, केवल तुम्हें।

0: अब टेलीलॉग माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉग फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: শ্রোতা শুনেছিলে গীতটি ওড়িয়া চিত্রের গীত কার্যক্রম শুনেছিল আকাশবাণী ব্রহ্মপুর কেন্দ্র প্রচারিত এফএম ব্যান্ড সাহিত্যিক ছ মেগাহার্জ আসন শুনবে গীতটি হিন্দি ভজন।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है, चेट्टीनाड सीमेंट पर।
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: श्रोता बंधु शुणुले हिंदी भजन शिल्पी मान अनुराधा पुड़वाल, जगजीत सिंह एवं लता मंगेशकर। प्रवर्ती कार्यक्रम समाचार प्रभात पर मॉर्निंग न्यूज रिले प्रचार कर चुका आकाशवाणी दिल्ली रू किण मत।

0: नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG और रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।

0: उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरनसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए

परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति

0: पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहसरा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। जैसे हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है सिराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते गर्व है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज़दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचे मार्स ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर

0: के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्ता का कहना है कि भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वागदेवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना डाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है, सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी सुरक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पद के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अब दलीलों के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେକେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: जो भी नारियल पानी हुआ ये सब छाछ ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा, आपको आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: विद भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और यह है चित्रलोक का अगला गाना।

तब लगा कि अहिशा फिल्म का ये गाना आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलती है अनु मलिक की तरसी, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज। फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है, और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं

0: तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करा है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विद्या भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, जी आप भी बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया हम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तू तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आपका जीवन साथी। जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनेयर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विक्की कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विक्की कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसलिए विक्की कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम करते हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया जिसने बनाई फिल्म मसान, और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की। God!

2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मनमर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मैं।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज ही अहंकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हसियों का मोल खजाना।
1: आनियो आनियो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन,
2: बहुत ही बुरा किसान।

ऐसी बेबी साल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम का एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अब टेलीलॉग के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉग सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सावित्री मो ऑफिस जाउछे
3: निया ए मासर इलेक्ट्रिक बिल भरि दबो।
2: बाप रे एत्ते टका
3: मु तो कहू छी सोलर पैनल लगे दबा मास को 300 यूनिट पर्यंत बिल बंचिबो।
2: सेथिरे केते खर्च हेबो जानी छ
3: काई चिंता करू छ सरकार सेथि पे सब्सिडी देउ छेंति परे
4: आके हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टका पर्यंत सब्सिडी देउ छेंति। pmsuryaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीसी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आम राजा बाबू कर जेते बेले देखि घरे एसी फैन सब चली थिबो।
3: ओहो मां तोर प्रति कथरे टेंशन।
2: इलेक्ट्रिक केते आसो छे जानजो?
3: देखो मां घरे सोला लगे देले चिंता जीव।
2: हां सेते जमिति मागने रे हे जीव
3: जानी न कि सरकार पर एथि पे सब्सिडी देउछंती।
4: आके हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। pmsurjaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बेटा शौर्य, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपरग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: लोकगीत शुणी दासकट परेशन कले बैद्यनाथ गायक रत्न शर्मा साथी भीमाशन शपथी शुणा केतोटी आधुनिक गीता

0: हर घर में कई कहानी होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे, हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है।
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तब भी भरोसा और आज भी है चेट्टीनाड सीमेंट पर।
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: निजाम रचना, कंठशिल्पी राधिका सतपथी एवं निवेदिता।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने रेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने

0: मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गु सीफी की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध क्या हुआ। अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीव का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ मिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा कितनी उड़ान बाकी है, परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बाहर के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वर में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छाव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्द पर

माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहाँ को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिए की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है, वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सकते, कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती है। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

0: तुमको मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिण फिल्म का गाना, अजय देव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और हमें खाना मिले से किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी, और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा

के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञानपरक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती कलियां महकती फूल बिखर जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है, और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहाँ सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नदी जीने की प्रेरणा देती है, वही चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। सूर्य सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैं सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, ज्ञान की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जा रहा है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर, पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहेगी कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहेगी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा संदेश दिख रहा है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, तो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं।

अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो यह अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया, और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो बोला, मैं डलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंदिर तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी।

कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है, सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है, किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: कब आता है,
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था, इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुरी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ या अगला गाना बज सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से नाच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं आइए सुनते हैं उनका संबोधन
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है ...2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं आज AI, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्रपत्रों की ऐतिहासिक वापसी ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे

0: को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले यह सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: And also infrastructure development that has happened.
2: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनसे कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

0: दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानसपति शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउ रेवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उपमुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कासिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई

0: से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

जाके पन घट पे बैठूं।

0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विवि भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मजाही गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से। इसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म डाक का ये गाना, साहिल लुधियानवी बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत लिपटा ये दिल का अफसाना, आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मचाए गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं। रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ संगीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ, सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौंज, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से दीपक।

0: दिले सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सभी के बोल नदीम शमन का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: हिरण पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
1: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ बाण शोभा नहीं देता।
2: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए राजन, फिर अपराधों को मारने के लिए नहीं।
0: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन। तपस्वियों का आदेश शिरोतारे है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
2: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
0: ईश्वर करे आपको अपनी तरह गुणवान प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
3: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
0: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंगव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
3: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
0: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
3: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
0: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
3: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वह शकुंतला उपस्थित है।
3: शकुंतला
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
3: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
3: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यही रोक दो, हम यहां से पैदल ही आएंगे।
1: योग्य महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष के आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रमवासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता विनय ने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहनों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।

0: तेरे लिए मंगलकारी है।
1: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
0: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
2: मोरा कहाँ से आ गया?
0: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
2: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
1: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
2: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
0: अरे बचाओ, बचाओ ना।
3: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
4: पृथ्वी पर पूर्ववंशी राजा शासन चलते शांत सरल तपस्वी बाहों को कौन भयभीत कर रहा है?
0: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
1: आपके आते ही भाभी गया।
0: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
1: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
4: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
0: सप्तपर्ण की इस वेद

0: और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
1: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य। किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं अब क्या बताऊं उन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
1: आज यदि पिता कर्ण यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
0: हाँ, ये अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकी क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
0: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला।
0: इसने आज तक किसी को नहीं

0: आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
1: तुम लोग चुप नहीं रह सके क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
3: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
0: बहुत मीठा है इसका गला,
3: कटी रहती है सबका भला।
0: इसने आज तक किसी को

0: उस मादक रूप को देखकर
1: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य।
0: किंतु क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कर्ण तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार ये बिना ही चली जाओगी?
4: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कुमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
4: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
2: ये लीजिए
0: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
4: आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
4: आपको ऋण करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
5: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
2: लगता है मेरी खोज निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
5: सावधान, वन के जीव जंतुओं के दान के रूप में एक उच्छुटन हाथी भी पास बचाता रहा है। सावधान
0: चलो चलो चलो, उस हाथी यहाँ आने से पहले कुटिया में लौट चले।
4: हाँ चलो, आया गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर आए, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो शकुंतला।
3: हाँ हाँ चलो
2: चलो, मैं भी सैनिक को देखूं। किंतु तू मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यही स्थिर होकर रहेगा है। चलो तुम से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।
6: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगे पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम ही चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
2: माधव्य,
6: लो नाम लेते प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
2: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
6: वाह क्या भंगिमा है, आंखें फोड़ कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों गिरे।
2: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
6: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
2: हाँ माधव्य,

0: इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
1: आश्रम का अलंकार?
0: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
1: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से कला?
0: माधव, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्मेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
1: विशेष बात?
0: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
1: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
0: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
0: उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
0: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
0: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूँ मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य। अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
0: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
0: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
4: आर्य जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
0: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
0: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: माता का संदेश?
5: महाराज की जय हो।
0: क्या आदेश माता का?
5: आज से चार दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
0: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव्य।
4: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
0: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
4: मैं? तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम्हें पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
4: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है।
0: और हाँ, इन सब सेवकों को अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
4: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज पर कर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखेगा युवराज।
4: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह रही थी, उसे सच समझ लेना।
4: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अंशुया?
2: प्रियंवरा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनुसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवरा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। इसी से पूछ कर देखे,
2: हाँ यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो।

0: पूछना चाहती हूँ।
1: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
0: हाँ, कारण कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार उपचार नहीं।
1: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
0: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
1: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला। हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
0: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से आंखों में समाए हैं तभी से।
1: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
0: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला। समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुजा। हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
2: हाँ, किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
1: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
2: वो कैसे?
1: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
2: हाँ जी, पिछले कई दिन से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
1: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
2: क्या?
1: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
2: फिर
1: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
2: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुईया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
1: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
2: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
2: क्या शकुंतला,
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
2: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
1: कौन होगा जो चंदना की शीतल चांदनी को छत लगाकर रोकना चाहेगा।
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न कर रही हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुने इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नाम के एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पराल पिकलाय आंबा आला बाई पराल पिकलाय आंबा नीट बघ पराल पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं

0: उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा। हमारी मेहमान कौन है तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
0: प्रमिला जी क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
1: जरूर,
0: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किस संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
1: अन्ना जी के सिवाय और वसंत देसाई के सिवाय।
0: अच्छा,
1: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, है मैंने आज
0: मंच पर आपने मंच पर दी है।
1: अन्ना जी के गानों का शो करा भुला है ना बने करके,
0: जी जी,
1: उनका उसका नाम था। तो हम शो करते थे षण्मुगानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रेवलिंग। तो उनका अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर। एकादी जागा समझो, एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा था ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ बुलाए ना उन्हें, कार्यक्रम था
0: अन्ना जी मतलब
1: श्री रामचंद्र जी, तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है। लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने की फरमाइश दे रहे थे। तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सुन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
0: अच्छा।
1: एक छोटी गायिका थी मुझे याद है,
0: हाँ,
1: नाम
0: हाँ।
1: नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
0: जी, जी,
1: वो पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में। तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती।
0: Okay.
1: एक समय कालीपा सुर है तो खर्च के जो सुर होते हैं आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन दे जो उनको चाहिए चाहिए बस। दोनों में फर्क था वसंत जी और अन्ना जी।
0: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
1: बहुत,
0: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी,
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों सर,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं नहीं,
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: भाग्य रहा मेरा। नहीं वाह, देखिए आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ, अरे वाह, ये
1: मराठी फिल्म, बसन जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उन दोनों की जुगलबंदी में दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ काम करेगी उनके सामने मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: ट्रैक
1: तो मैं बहुत दब थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका असल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनको मालूम था उस जगह

0: चाहिए ही चाहिए।
1: हाँ
0: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा,
1: ओ
0: वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
1: जी जी
0: पुराना कोई फिल्म का,
1: हाँ
0: और सेकंड गाना लावणी,
1: अच्छा
0: हाँ दूसरा गाना लावणी,
1: ओहो
0: तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
1: हाँ हाँ
0: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच, मैं भी उनको जरा जाना के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी, तो
1: अच्छा
0: बोल
1: अच्छा अच्छा
0: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और
1: हाँ
0: वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है,
1: जी बिल्कुल
0: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले
1: हाँ
0: में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि
1: ओह
0: ये गाना इनका।
1: अच्छा
0: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
1: हाँ
0: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे
1: हाँ
0: मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्त जी की लावणी है ना पाड़ल पिकला अम्बा, वो गाई है। अब वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो
1: ओह
0: उसकी नहीं, वो मेरे है, तो उसकी उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से
1: जी
0: कोई
1: जी
0: कोई गाने इतने, गुजराती में गुजराती गुजराती,
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी,
1: ओह
0: फिर मलयालम, ऐसे
1: अच्छा
0: एक ही थोड़ा
1: अच्छा
0: थोड़ा तैयार करके। तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
1: अच्छा
0: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना
1: हाँ
0: तो मस्त उनको मजा
1: क्या
0: आता था
1: बात है
0: सुनने
1: क्या बात
0: में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं
1: हाँ
0: आपको बता
1: हाँ
0: के नहीं,
1: बिल्कुल
0: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे
1: हाँ
0: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का
1: स्क्रीन
0: फोड़ी,
1: पर
0: स्क्रीन नहीं ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा कटआउट
0: बहुत बड़ा
1: बनाया
0: कटआउट बनाया था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पहले लकड़ी का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ी पत्रे का बनाया था
1: जी जी जी
0: मिटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्ता राहुल सुनहरी यादे, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो
1: जी
0: मुझे उसी बदल लोग अभी भी याद करते हैं
1: जी जी
0: कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था,
1: हाँ
0: इंदौर
1: हाँ
0: के पास मध्य प्रदेश में गाँव है
1: हाँ
0: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे, तो
1: अच्छा
0: ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
1: घूम
0: है
1: रहा है
0: ऐसा
1: अच्छा
0: लगता
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा
0: तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
1: हाँ
0: मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ एक
1: ओहो
0: तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था
1: हाँ
0: कि उसको
1: बिल्कुल
0: रिकॉर्ड जैसा
1: क्या बात
0: लगा
1: क्या
0: लेकिन मैंने
1: बात
0: कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया,
1: जी
0: मैंने
1: जी जी
0: उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा
1: हाँ
0: गाना, फिर वो शांत हो गया
1: क्या बात
0: आदमी
1: क्या बात। श्रोताओं की बात निकली है
0: जी
1: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में
0: हाँ
1: शोज
0: जी
1: दिए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
0: जी
1: हर शहर का श्रोता अलग होता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन
1: हाँ
0: अनुभव से
1: हाँ
0: आपको मालूम होना चाहिए
1: हाँ
0: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
1: जी
0: एक
1: जी
0: साल वो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सबके सामने ये कर रहे हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: फिर दो गाने के बाद ये कोटा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा
1: अच्छा
0: के नहीं आती बात।
1: अच्छा अच्छा
0: और जहां तक पहली बार भी गए
1: हाँ
0: किसी शहर में किसी गांव
1: हाँ
0: में छोटे से गांव में भी,
1: जी जी
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस
1: ओहो
0: प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता
1: हाँ।
0: था
1: और
0: समझ।
1: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
1: अच्छा
0: है
1: हाँ
0: अच्छा लोग,
1: हाँ
0: क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे,
1: पसंद आता था
0: प्रमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छी आती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछे
1: जी
0: थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफी साहब का गाना एक दुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: ओह
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो वो
1: जी
0: आगे आके उनको उसको एक मतलब ना, मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे
1: जी

0: गया फिर जानवी इसकी अरे परसों भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जानी भाई अभी तो लगे पूना गाने का लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था मजा आता था लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं ये गाना सुन लेते हैं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था, अगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ,
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जैसे नाम होता है,
0: जी जी
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ
1: ये होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये छपका डोर आता है उनके ऊपर,
0: जी जी
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे याद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही वो उसमें खुश थी।
0: जी जी जी
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कैसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी जी
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे

0: जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
1: हाँ
0: उन्होंने मेरा शो को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है। तो
1: हाँ
0: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: अच्छे
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: दूसरा कोई कहने की
1: हाँ
0: जरूरत
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल, शो में
0: है।
1: आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
0: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
1: तो
0: जरूर,
1: सवाल नहीं, वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर
0: बिल्कुल।
1: होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं।
0: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
1: हाँ
0: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं
1: प्राइवेट
0: है।
1: शोज भी होते हैं कई
0: प्राइवेट
1: बार
0: शोज भी
1: जी, कंपनी के लिए
0: होते थे
1: किसी।
0: कंपनी के लिए, किसी
1: हाँ
0: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
1: अच्छा
0: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी
1: जी,
0: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी।
1: अच्छा
0: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
1: जी
0: किया
1: जी जी
0: मेरे को।
1: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
0: हाँ
1: हैं,
0: जी
1: सबका अपना अलग अंदाज होता
0: हाँ
1: है, अपना
0: जी
1: स्टाइल
0: जी
1: होता है।
0: एकदम
1: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
0: समझ,
1: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
0: सही
1: उनकी
0: बात सही बात।
1: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
0: हाँ जी
1: शमशाद
0: हाँ जी
1: बेगम जी के
0: हाँ
1: प्रस्तुत,
0: जी हाँ
1: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशन गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
0: यूं
1: किन
0: कहूंगी
1: कंपोजिशंस में
0: कि
1: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
0: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
1: जी जी
0: पुराने जमाने के जो कॉम्पोजिशंस थे
1: जी
0: वो चैलेंजिंग थे।
1: अच्छा
0: हाँ अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा
0: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पुराने जो गाने थे
1: हाँ
0: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
1: हाँ
0: बीच का,
1: जी
0: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
1: हाँ सही
0: ऐसा
1: बात
0: चिल्लाते थे।
1: है
0: जरा
1: जी
0: भी मैं इसका किस्सा बताती हूँ,
1: जी
0: मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
1: हाँ हाँ
0: उन्होंने शुरुआत करी थी मेरे शो से की थी,
1: अच्छा
0: तो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचिए गाना,
1: जी जी
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ तो नंदुरबार करके गावे छोटा
1: जी
0: सा दुलिया के पास,
1: जी
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते एक आपका पूरा अच्छा हुआ ये अच्छा ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
1: हाँ
0: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
1: हाँ
0: क्लासिकल का ज्ञान
1: हाँ हाँ
0: था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
1: ओ
0: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर
1: हाँ
0: खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद ताने लिए है
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा,
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं के
0: भी,
1: समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है
0: गाने
1: जी।
0: बराबर उनको ए करके चिल्ला दे वहां से।
1: हाँ, क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म जो उन्होंने देखा है और गीत को बार बार
0: हाँ
1: सुना
0: वो
1: है, तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं
0: अभी ये
1: जी।
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टर टर
1: हाँ
0: टर, वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक
1: जी
0: चिपक
1: जी
0: के चलता था
1: जी जी
0: शब्दों को
1: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी।
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा
1: अपना
0: करते
1: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से गाने के हिसाब से।
1: जी
0: इसका मैं आप बताओ किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे वो ही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ढोलकी वाला आया करिए कीबोर्ड वाला आया, उनको
1: हाँ
0: गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो

0: एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी,
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ एक रिहर्सल, वो मुझे अभी मालूम पड़ी हुआ
1: क्या
0: है।
1: बात।
0: जो तो ठीक है कि उनको मैं सब गाने, मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
1: हाँ
0: म्यूजिशियंस,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई,
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है। तो
1: अच्छा
0: ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल।
1: बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो,
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको,
1: जी
0: शो
1: जी
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय माड़
0: विनय मनके।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि
0: और
1: बहुत से विज्ञापनों में विनय माड़ की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग बोलते थे, बहुत सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने। और
1: अच्छा
0: स्टेज पे जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्म होता है,
1: जी
0: वो था। बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में,
1: अच्छा।
0: मतलब ऐसे किसी
1: हाँ
0: को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे,
1: जी
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोर्स देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ अशोक जी ने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर मैंने मेरे को समझाया, फिर वो तो वैसा वो मजा आया, मजा आ गया।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: समझाते
0: एक
1: हैं
0: गाना था अन्ना
1: जी।
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी। मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा
0: मजा आता
1: मस्ती
0: था,
1: के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड
1: रहते थे।
0: में।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रवि साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाता था उसको। उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जाते उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं, कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी,
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो है मेरे शो में आके गए हैं, पड़वा के शो में वसंत दादा पाटिल, शंकर चौहान और जो कुछ विलास देशमुख, सुशील कुमार जी, शिंदे सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी या तो फिर कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पाली सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा का आला तू मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा,
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो बाहर गाँव जाने वाली थी,
1: अच्छा। नहीं
0: है। फिर मुझे पूछते हैं कि कसे भाव तुम्हें अच्छे प्रोग्राम करता है, उड़े प्रवास कराएगा पर गायला उभर आए तो कसो करता, मतलब नहीं अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय अलग

0: शुक्ला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ा
0: लावणी है,
1: लड़की
0: पाड़ा ला पिकला
1: अम्बा।
0: अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में
1: हाँ,
0: शामिल होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत
0: था?
1: ही जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और भी
0: तो एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: जरूर
0: और
1: जरूर।
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बगुन तुम्ही जाना हो पाऊन, नमुना बगुन तुम्ही जाना हो पाऊन पाऊन पाऊन जरा थांबा, हो पाऊन जरा थांबा, पाडाला पिकलाय आंबा।

0: अरे घे पड़ाला पिकलाय अंबा आलावाय पड़ाला पिकलाय अम हो निटवग पड़ाला पिकलाय अंबा। कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर ये गाना तो वंसोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं भी अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छतरी पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह,
0: उनको भी शायद
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: थी। हाँ,
1: अपने
0: कन्नड़ा गाना थोड़ा सुनाती हूँ।
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब
1: कोशिश
0: गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई
1: थी।
0: क्या
1: हाँ बाप रे,
0: हमारा
1: गुजरात
0: नसीब।
1: ही तो वही गाना था।
0: हाँ।

0: ये गाना बहुत उधर है। उधर गुजरात की मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, वो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं, वो पहनवाए बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रोए ऐसा, एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके घुटने पे हाथ रखे, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बहन नवो पिक्चर गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी.
0: उसकी तरफ देखा और तेरा पग पहले नीचे कर, इतना कॉन्शियस हुआ और आजू बाजू के लोग भी सब हंसे लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त

0: पहली
1: जी
0: बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई
1: हाँ
0: होगी,
1: जी
0: लिस्ट
1: हाँ
0: बनाई
1: जी हाँ
0: होगी,
1: जी
0: है ना, और आखिरी शो जब किया
1: हाँ जी
0: तब की जो उस प्रोग्राम शो की जो लिस्ट थी।
1: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
0: अच्छा
1: लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा
1: हमारे लिए नहीं,
0: हाँ
1: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदले होते थे इधर
0: हाँ हाँ
1: उधर,
0: हाँ
1: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के
0: हाँ
1: पहले से थे
0: अच्छा
1: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
0: हाँ
1: के लिए,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन एक अवारी जो मैंने बोली
0: जी
1: गाहे मिलाने को जी
0: जी
1: चाहता है पे पाड़ा पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी 5 गायिकाओं की वो
0: हाँ
1: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी, उनके
0: अच्छा
1: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो वही गाने चाहिए लोगों
0: वाह
1: को
0: वाह वाह,
1: बहुत मजा आता था।
0: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
1: हाँ जी
0: करके।
1: हाँ जी
0: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा
1: ओहो
0: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई साल से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
1: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला लतार से जयंत पत्रिका की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एमपीएससी।
1: मैंने पढ़ा जारी कितने उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगदीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विद भारती पर।
1: जाने कितने

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तिया राइट हेले ए पचन एते स्ट्रांग केम छै।
3: अरे एकदम सिंपल सहीथि पाई मु सेते मोर विश्वास रखली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट परे
4: शक्ति रहा वर्ष वर्ष नुए बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: प्रथम गीतटी सुनंतु श्यामामणि देवी कंठरे रचना प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनार सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनार सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: परवर्ती गीत विष्णु चरण साहू रचना कंठदान कर गोविंद चंद्र सेनापति।

0: समस्त सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गर्व के साथ बिता सको।
0: ए पर्यंत यही योजना रे 8,85,00,000 रु अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारे। यदि आप 18-40 वर्ष वयस तेज मासिक अटल पेंशन सहित तीनो ग्यारंटेड सुविधा विषय जानवाई आप बैंक शाखा कर।
2: परवर्ती गीत शुणंतु लीना मिश्रंक कंठरे, रचना संग्राम महंती।

0: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां दी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत हुई है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट चॉइस।
3: परवर्ती गीत शुणु। रजनीकांत नायक रचन कंठन करना।

0: हर घर में कई कहानियाँ होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है,
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिड सीमेंट। 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
2: परवर्ती सुनंतु कल्याणी दासंक कंडरे रचना कमलाकांत लिंगा।

0: आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं माने हाँ बा सोलर करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर जनो बिजुली बिल पहुंची जीबो
1: सत्तरे
0: खाली सेती क्यों हाँ बा सौर शक्ति व्यवहार करे परिवेश भी सुरक्षित रहिबो
2: आज हाँ पीएम सूर्य घर योजना केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टका पर्यंत सब्सिडी देउछंती पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु
3: कार्यक्रमर शेष गीतटी शुणन्तु निजामक रचनारु कण्ठदान करछन्ती लक्ष्मीकांत पालित।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनले किसी सुगम संगीत आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान अपराह्न 5:30 प्रसार करछु कार्यक्रम जुबवाणी उपस्थापनारे अछन्ति वर्षाराणी पाणिग्राही ओ ज्योति कुमारी बेहरा। श्रोता बंधु आपण ई कार्यक्रम शुणिबे एही विज्ञापन विरति परे।
3: आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
4: सिंपल है, तब भी भरोसा और आज भी है चेट्टीनाड सीमेंट पर।
5: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: कानूनी मदद सलाह दिलाती, सही राह दिखाती।
0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: अच्छा दास बाबू, आपनको घरटा 1970 रे तयारी ता, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग किंति अछि?
8: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्ये चेट्टीनाड सीमेंट उपरे
9: सकी जहां वर्ष वर्तन हुए बरम पेड़ पाई रही थाए। चेट्टीनाड सीमेंट सुपर ग्रिड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूलदा। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: जय जगन्नाथ नमस्कार।
1: जय जगन्नाथ भाई, हालो जीव पानी कार्यक्रम को आपको स्वागत। बहुत सुंदर गीत गाइले, किए कहुतले?
0: मु रेडियो लहर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम आउ मु आकाशवाणी रो 90 वर्ष पूर्ति उपलक्षे मो निज लेखा गोटे अछि टिके गा परबी।
1: आगे आगे निश्चित हम श्रोता मन को सुनंतु।
2: हे मिति राति सद अभूला स्मृति रेडियो सुनी सुनी दिन जाओ गो बीती देख रेडियो कहे सभी श्रोता कने देख रेडियो कहे सभी श्रोता कने तुम सुख दुख रो साथी खरा बरसा बना बात्या सूचना दिए भजन जनान संगीत सुनाई सभी श्रोता महे दस कठिया पल्ला पुणी नाटक सुनाए ओडिशार बर पुत्र मान केते गाथा से कहे जिए तकु कहे निजर से बेटा को कहे नि पर ए बंधन रही थाउ जुग जुगर।
1: वाह, बहुत बढ़िया गाइले और ताठ बढ़िया लिखी चंती भी आपण।
0: आज्ञा,
1: बहुत भल लागिला भाई आपनको सहित कथा के। केमती अछन नारायण भाई?
0: हमर तो आइसक्रीम वेपर चालछ अबिका सीजन टाइम टा भलो चालछ।
1: अच्छा, कार्यक्रम केमती लागुछि भाई कहंतु?
0: कार्यक्रम तो हमर बहुत भलो लागुछि। गंजामर लोक अनुरोध मत प्रसारण करा जाउछि आउ तापर हमर जुवान कार्यक्रम बहुत भलो होउछि आउ स्वास्थ्य भीतर कार्यक्रम जी प्रश्न उत्तर गो कार्यक्रम फल पता नै कि भलो होनता बटन चालछि।
1: अच्छा, कोन आछि गीत सुनबे कहले?
0: आज बहुत सुपर हिट गीत गीत फिल्म हला एक दुसे के आ गीत हला

0: पे उसका इंतजाम है।
1: हेलो
2: हेलो
1: संतोष भाई नमस्कार।
2: मैडम नमस्कार। मैडम
1: केमती अछंती? मु तो बहुत बढ़िया अछि। आपण भल अछंती?
2: हां मैडम भल अछि।
1: आ कोन करछंती भाई?
2: ए मैडम एबे गाटेर करथिले जे बाड़ी तो एले आरो गुरुवार लगेली जानि पालिनी एकन गुरुवार रे भाभी दि पकिली आज आज आउ तो मन पके लकी दिया।
1: अच्छा तो हमर श्रोता मानन को भी हम जणै दउछु जे प्रत्येक मासर द्वितीय एवं चतुर्थ गुरुवार मध्यान 12टा रे 12टा 30 मध्ये हमर हेलो जुव बाणी कार्यक्रम टी हुए।
2: ना मु मन रखिली आगे जे भाभी कोन अर्थरे ही लबरा
1: आगे माने बहुत जण एमति हुअंती कन्फ्यूज हे जान द्वितीय गुरुवार आ प्रथम गुरुवार को नेकी। बहुत भल लगे भाई आपण हमको मन पके के कॉल करूछन सुन के बहुत भल लगे। कार्यक्रम सुनछन कि नै?
2: हां मैडम सुनछी।
1: केमती लागो कार्यक्रम?
2: मैडम बहुत भल लागो।
1: अच्छा भाई आज कोन गीत सुनिबे कोंतो?
2: मैडम आज देखे नमी चारवाल रे गोड भजन दिउंतु।
1: अच्छा नमित अग्रवाल करो गोड सुंदर भजन आमे सुनौछु आपण सुनंतु आ हमको एमती मन पके के कॉल करथांतु।
2: हां मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲେ ବର୍ଷାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜ୍ୟୋତି କୁମାରୀ ବେହେରା।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: ଆମ ରାଜା ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଘରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ।
4: ଓହୋ ମା, ତମର ପ୍ରତି କଥା ଟେନସନ।
3: ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ?
4: ଦେଖ ମା, ଘରେ ସୋଲାର ଲଗେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଯିବ।
3: ହଁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମାଗଣାରେ ହେଇଯିବ।
4: ଜାଣିନ କି ସରକାର ପରା ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି?
5: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
6: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
7: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
6: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
7: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चेटिनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
9: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान

0: Indira Shetty entered the men's double final after defeating Malaysia's Goh Se Phe and Noor Isuddin in the semi-final in Bangkok today. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान अपराह 6:10 कार्यक्रम प्रसार होती एफएम बैंड 6.6 MHz जोगे एवं मोबाइल आप न्यूज ऑन एआईआर माध्यम रे श्रोता बंधु सुनतु आज आम केन्द्र द्वारा प्रसार होगाक विभिन्न कार्यक्रम सूचना ଅପରାହ୍ନ 6:15 ଶୁଣିବେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 33ତମ ଭାଗ। ଅପରାହ୍ନ 6:25 ଶୁଣିବେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତଟିଏ।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरा एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान अपराह 6:15 ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର 33ତମ ଭାଗ
2: ଏପିସୋଡ୍ 33 3 3

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: अवस्था उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जनातु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला अंशुघातर आशंका अधिक रही।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

0: अब टेलों के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह दे सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: परवर्ती गीतटी सुनंतु कथचित्र चांदना तमे तारारु बसंतराज सावलंक रचनारु कंठदान करछन्ति कुमार बाबी एवं तपु मिश्र संगीत सजाइछन्ति प्रेम आनंद।

0: आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: आर्थिक सुदृढ़ीकरण दिगरे विश्वस्तरीय उद्यम संपर्क सूचना दे प्रधानमंत्री कहते भारत एवं नेदरलैंड मिलित भाव जोगाण श्रृंखला गठन उपर गुरुत्व प्रदान कर भारत विश्व प्रमुख भूमिका ग्रहण करने दिगरे अग्रसर होश शताब्दी देश एक सुजोग सृष्टिकारी राष्ट्र भाव कार्य कर उभय प्रजुक्ति विद्या और मानव संबल को प्रयोग कर बास्तवत परिणत करने लगे कार्य कर श्री मोदी नेदरलैंड समाज एवं यार अर्थनीति प्रवासी भारतीयों अवदान पर भारत गर्व कर श्री मोदी एथिलागि नेदरलैंड जनता एवं सरकार प्रति प्रधानमंत्री कृतज्ञता जनाई।
0: नेदरलैंड के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नेदरलैंड की जनता का यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री नेदरलैंड राजा विलियम अलेक्जेंडर एवं रानी मैक्सिमा सहित साक्षात आलोचना कर पंचराष्ट्र गस्तर द्वितीय पर्यायर श्री मोदी गतल विलंबित राति नेदरलैंड पहुंचे यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक सहित भारत रणनीतिक तथा आर्थिक संपर्क को अधिक सुदृढ़ करवा यह गस्तर मुख्य उद्देश्य रही। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तांको गुजरात गस्त काल में राज्य कार्यकारी होता विभिन्न विकासमूलक कार्य समीक्षा कर अहमदाबाद और गांधीनगर अनुषित बैठक में से वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न भित्तिमि प्रकल्प कार्यकारिता आलोचना कर गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन मंडल में चली चारारोपण कार्य समीक्षा कर सार्किस गांधीनगर करिडर आधुनिकीकरण और घाटलोडिया गोटा चंदलोडिया और थाल्टेस मध्ये आंतरजोगाजोग कार्य त्वरान्वित उपाय आलोचना करथिले। गांधीनगर लोकसभा अंचल नूतन भाव निर्वाचित होता सतुरी जन पौर निगम काउनसिलर को श्री शाह भेटे जनसाधारण अभियोग और सेगुड़िक तुरंत कार्यकारिता नहीं प्रशासनिक अधिकारी सह कार्य लगे श्री शाह से परामर्श देते। गतकाली श्री शाह अखंड नंद और शास्तु साहित्य मुद्रण ट्रस्ट कार्य समीक्षा करते श्री शाह समस्त विकासमूलक कार्य को निर्धारित समय मध्य शेष करने लगे विभाग अधिकारी परामर्श देते। नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र प्रकट मामलें केन्द्र तदंतकारी संस्था सीबीआई आज जीव विज्ञान प्रश्नपत्र प्रकट सह संपृक्त पुणेर मनीषा गोरनाथ मांधे को गिरफ्त कर मांधे जड़े उद्भिद विज्ञानी अध्यापिका सीबीआई पक्षर् नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिय एनटीए पक्ष विशेषज्ञ भाव निजुक्त कर तदंतकारी संस्थार सूचना अनुसार मांधे नीट परीक्षार उद्भिद और जीव विज्ञान प्रश्नपत्र संपर्क में पूर्ण अवगत थे। वर्तमान सुधा दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे एवं अहल्यानगर सीबीआई 9 जन को गिरफ्त कर 5 जन को कोर्ट चालन कर पुलिस रिमांड में प्रश्नपत्र प्रकट संपर्क में पचराउचरा जारी रखी मामलें अन्य 2 जन गतकाल गिरफ्त होती। सीबीआई पक्ष मिलता सूचना अनुसार 6 स्थान में चढ़ऊ कर परीक्षा संपर्कित दस्तावेज लैपटप बैंक कागजपत और मोबाइल फोन जबत कर। दिल्ली पुलिस अर्थनैतिक अपराधिक शाखा ईओडब्ल्यू द्रव्य और सेवाकर दुर्नीति मामला सह जड़ित 6 जन को गिरफ्त कर एक सांबादिक सम्मेलन में ईओडब्ल्यूर अतिरिक्त कमिशनर रवि कुमार सिंह कहते हैं अभियुक्त मिथ्या फार्म परिचालना करते 50 मिथ्या कंपानी कर जीएसटी रिटर्न दुर्नीति मिथ्या बिलिंग में संपृक्त थे। कंपानीगुड़िक प्राय 128 कोटी टंकार जीएसटी फांकी 51 लाख टंका 15 मोबाइल फोन और अन्यान्य सामग्री जबत करा जाए छी। शिक्षा मंत्रालय पक्ष देश में 14-18 वर्ष बयस मध्य विद्यालय छाड़ छात्र संख्या वृद्धि पाता कारण उद्वेग प्रकाश पाई। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार अध्यक्षत अनुषित एक उच्चस्तरीय बैठक में जातीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस पक्ष प्रस्तावित नूत पदक्षेप और रणनीति कार्यकारिता समीक्षा और आलोचना कर बैठक में श्री कुमार कहते मिली तथ्य अनुजाई प्रथम श्रेणी में 100 छात्र नाम लिखाऊ द्वादश श्रेणी बेलू यार संख्या

0: महानगर ग्राम सड़क योजना की आता पक्की 600 किलोमीटर सड़क रायगढ़ जिले में प्रस्तावित अच्छी आता छड़ा मुख्यमंत्री सड़क जो मिशन से रायगढ़ 175 पाखापाखी प्रोजेक्ट सब मुख्यमंत्री सड़क योजना जो की 50 पॉपुलेशन अच्छी पर्यटन जो अनकैबिटेशन जाए 175 प्रोजेक्ट नहीं आज से पाखापाखी 400 किलोमीटर सड़क होता धरिकी रायगढ़ सबू सदा समस्या थी कि हैबिटेशन को कनेक्टिविटी नहीं रोड कनेक्टिविटी है एम्बुलेंस जापर लोक चाव भत्ता ने आसपारे अधिकारी गाड़ी पहुंची पड़े आहरी कम्युनिकेशन रोड
1: रेल विभाग रायगढ़ रेल डिविजन को संपूर्ण कार्यक्षम करने को निष्पत्ति पूर्वतट रेल जोन तृतीय डिविजन भाव रायगढ़ स्वीकृति पाई डिविजन अधीन प्राय 695 किलोमीटर रेल नेटवर्क रायगढ़ में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में प्राय 25,278 मामला समाधान हो जिला दौरा जज दामोदर रथों तत्वावधान में अनुष्ठित लोक अदालत में प्राय 25 लाख टंकार आपोष समाधान कर जिलार विभिन्न कोर्टे दीर्घदिन धरी पड़ रही मामलागुड़िकर फैसला कर रायगढ़ जिले में आसंता 20 तारीखर रविधान मंडी खोल जिलापा अध्यक्षतार अनुषित रविधान संग्रह कमिटी बैठक निष्पत्ति कृषि विभाग अनुसार जिले में प्राय 1,58,000 क्विंटल रविधान उत्पादन होवार अनुमान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजन रायगढ़ जिलार 22 जोड़ी बरकन्या सामूहिक बहुत अनुषित जिला प्रशासन महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्ष जेकेपुर आयोजित एक कार्यक्रम में नवदंपति को बहुत सामग्री एवं आर्थिक सहायता प्रदान करा रायगढ़ जिला परिषद 82वीं बैठक अध्यक्षा सरस्वती माझी अध्यक्षत अनुषित बैठक में जिलार विकासमूलक कार्य पंचायत और विभिन्न विभाग योजनार अग्रगति संपर्क में समीक्षा कर रायगढ़ में जातीय पंचायतराज दिवस पालित हो कार्यक्रम में स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष विद्याधर सबर जिला परिषद अध्यक्षा सरस्वती माझी एवं जिलापाल आशुतोष कुलकर्णी उपस्थित थे कल्याणपुर ब्लक जिला स्तरीय अक्षय तृतीया एवं कृषक दिवस पालित हो विषमकटक विधायक नीलमाधव हिकका हलगरी चाष कार्यर शुभारंभ कर जिलापालों अध्यक्षत मंगल विभाग अधीन आवासिक विद्यालयगुड़िक शिक्षार मान उन्नति एवं छात्रावास परिचालन समीक्षा बैठक हो 149 आवासिक विद्यालय प्रधान शिक्षक और अधीक्षक एगदे जिला आईन सेवा प्राधिकरण पक्षर हालुआ पंचायत आईन सचेतनता कार्यक्रम अनुषित नूतन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं छात्र छात्री सरकारी सहायता योजना सम्बन्धे सचेतनता करा था उत्कल गौरव मधुसूदन दास 179वीं जयंती रायगढ़ जिला कोर्ट एवं वैषयिक शिक्षानुष्ठान पालित हो पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉ सदाशिव त्रिपाठी जयंती जिला सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्ष पालन कर रायगढ़ जिले में सुभद्रा शक्ति सचेतनता शोभायात्रा आयोजित हो जिला उन्नयन अधिकारी अक्षय खेमुंडु यहाँ पताका देखा शुभारंभ करते जिला हालचाल आज आसंता जिला हालचाल शुणे संबलपुर जिला संपर्क
2: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र
3: प्रत्येक
4: देख मा घरे सोलार लगे दिले चिंता जीवो
3: हाँ सेते जमती मागणे रे हेई जीवो
4: जानी ना कि सरकार पर एथि पे सब्सिडी देउछंती
5: आज्ञा हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु
2: प्रचार करछु कार्यक्रम बनानी

0: नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानक आज बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत श्रोता बंधु जंगल भितर निरीह जीव को सुरक्षा देवा को आगे आस उजुड़ा बास को सजाड़ा प्रत्येक लोक कर प्रयास
1: हाँ श्रोता बंधु वन्य प्राणी मैंने जंगल रंग सेमाने जंगलर सौंदर्य वृद्धि करने सहित परिवेश को संतुलित अवस्था रखि था
0: मनुष्य और वन्य प्राणी परस्पर परिपूरक तेणु वन्य प्राणी का सुरक्षा निमित्त समस्त कार्य करने सचेतनता सृष्टि करने सहित सेमानक संरक्षण प्रति जत्नवान होगा उचित
1: कहीं वन्य प्राणी न रहे खाद्य श्रृंखल व्याघत घटव आ प्रकृति तार भारसाम्य हर बस
0: वन्य प्राणी का सुरक्षा को नजर रखे वन्य प्राणी सुरक्षा आईन 1972 प्रणयन होता आईन द्वारा शिकार तथा वन्य प्राणी को क्षति पहुंचा दोषी को कठोर दंड दंडित करिबार व्यवस्था रही
1: सब सत्वे वन्य प्राणी मान क्षय क्षति चली तेणु प्रत्येक जदि जीवे दया मनोभाव पोषण करी सेमानंकर सुरक्षा संरक्षण प्रति सजाग हेबे ताले निश्चय क्षय क्षतिर अंत घटिब
0: विलुप्त हे जथवा वन्य प्राणी मानंकर संरक्षण रा आवश्यकता उपलब्धि करी सरकार विभिन्न योजना तथा प्रकल्प परिकल्पना करछंती
1: केवल सरकार वन विभाग चाहिले ए समस्यार समाधान हे परिबनी एथि पई जनसाधारणकर सहाय्य सहयोग अपरिहार्य
0: वन्य प्राणीकर सुरक्षा ले जंगल विकास हेबा सहित सरकार अर्थनीति उन्नति साधित
1: हेले वन्य प्राणी मानंकर किपरि केउं भली भाबरे सुरक्षा हे परिबो तांगर परिचालना किपरि सुचारु रूपे करा जाई परिबो एही सब प्रसंग को आधार करि आज बनानी कार्यक्रम रे रहिछि एक विशेष आलोचना
0: आलोचनार विषय हेछि वन्य प्राणी का सुरक्षा और परिचालना ये संपर्क आलोचना करने आम सहित अच्छा डंपड़ा वन्य प्राणी वनांचल अधिकारी निरंजन महापात्र
1: सहित आलोचन अंश ग्रहण करहारबाला पटनायक
2: सर नमस्कार आपण को स्वागत करुचान कार्यक्रम को
3: नमस्कार मैडम
2: प्रथम कहतु वन्य जंतु सुरक्षा और परिचालन कहले साधारण भाव गोटे साधारण लोक कौन बुझे
3: गोटे इकोसिस्टम भितर प्रत्येक जीव जंतु बचार गोटे अधिकार अच्छी से मुंह खोलिक समाज को कौन सीधा सड़क बार्ता न दे पारती तथापि भावना को बुझिकर चालीचलन को बुझिकी हाव को परीक्षण निरीक्षण करी सुरक्षा प्रदान करने हूँ वन विभाग कर्तव्य जो प्रश्न उठू कहीं सुरक्षा प्रदान करवा जमी मानव जगत में बचार मानव गोटे अधिकार अच्छी ठीक से वन्य प्राणी जगत में वन्य प्राणी मानते बचार गोटे अधिकार
2: अच्छी
3: अधिकार को सब्यस्त करने राज्य सरकार गोटे वन प्रशासन अच्छी
2: वन्य प्राणी सुरक्षा परिवेश किसी प्रभाव पकई था कि
3: निश्चित रूप तार बहुत बड़ प्रभाव अच्छी जदि आप वन्य प्राणी सुरक्षा न करते सब जीवन सुरक्षा न करते सोसाइटी गोटे डिटोरिएशन आसो गोटे छोटे एक्जामपल दूसरी आप आज का डेट में देखते प्रत्येक परिवार गोटे गोटे एसी व्यवहार करुचे तार कारण है गोटे उच्च वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि घटू ग्रीन कवरेज दिन कमुचि विश्व तापमात्रा बढ़ुची

0: सुनील कार्यक्रम बनानी
1: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय बर्तमान राति 8:00 आपण कार्यक्रम सुनछन्ति एफएमएनर 100.6 MHz जोगे एवं मोबाइल आप न्यूज ऑन एआईआर माध्यम रे श्रोताबंधु बर्तमान सुनंतु केतुटी हिंदी कथाचित्रर गीत प्रथम गीतटी सुनंतु मोहम्मद रफी एवं गीता दत्तक कंठरे रचना भरत व्यास एवं संगीत निर्देशना हेमंत कुमार कथाचित्र प्यासा।

0: अब टेलीरॉक के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीरॉक फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएसी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରଚନା ମଜରୁ ସୁଲତାନପୁରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏସ୍ଡି ବର୍ମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିନ୍ ଦେବିଆଁ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 70 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने की साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML

0: और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम ने टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जाती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेटल यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए

0: इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु

0: भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना सचिन देवबर्मन का संगीत।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करा है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो से की ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रसल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के करेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वा की आवाजें बुलंद होगी। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीना एक गृहिणी हैं और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड इंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्म देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर अमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज भाईवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए, एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विक्की कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और उन्हें विक्की कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विद भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

0: 18 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश होगार and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. Pandit Kaivalya Kumar Gurav begins his vocal recital with Rag Durga, Rupak Tal, Rasa Kanhare, Drut Ek Tal, Lagi Lagana Tore Piyase, Drut Teen Tal, Chatura Sugara.

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Rag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you are listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhanshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए

0: साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड से यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीति गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities.